बल्ले हरे सैदा सैदा बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे अरे दास हमारी वार तो दिया गे अरे दास हमारी वार जियो पेंड सब तेरा जियो पेंड सब तेरा सचिया।

राज करेगा खालसा की रहे ना कोई बार हुए सब मिलेंगे बजे चरण जो होए उठी स्वाब ने जी कर गुना प्रसार लंका बाजे फिर कान्हा कलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्त स्वयं भाव सतम सर्वदा सर्व जुगते लोका लंग पर नाची दया लंग स्वरूप सदा अंग संगे अपंगम विभूते देखो दरबार में तेरे दरबार लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार सर्वदेव ते कर नमस्कार

त्व प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंश तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दस चार चार निधान अकलंक।

भूत बन चारी चित छाना सब दूता धारी पौन के हारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैयता है पंच की बडैया देत बगुला बिटाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जित बड गया नित नो जानी पबखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैयता है भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सोच रही कह पखानी है। फल के बछैयता है बांदरी के जैया कह आद सफिर तो भूत के पछानी है। जल के तरय को गंगे ऋषि कहत जग आके भचैया सो जकोर सम मानिय। सूरज सिवैयता है कौल की बंडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भव करई करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अर विषण कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बितय है। मोहन दी मदार कित्य अश्विनी कुमार कित्य अंशावतार कित्य काल बस भय है। पीर यो पिकम्बर कित्य गण न परत इत भूम ही ते हो के फिर भूम ही मिलय है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दो बची कपट फेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीश को कहा भयो मल जो बिकाड़त अनेक दंड सोतना डंडोत अस टांग अति तीस को।

ताप के सहित जो बिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो बिपायत अजाप देव बूधना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की बरत कर पताल के बस के भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो कि भयो

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच बच को करेंगे भज केते।

जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। कुगत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंग वासी केते मदिना मकानी वासी केत उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दूह को भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के बीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सीख हारे चंदन लगाए हरे चोचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पच हारे पंडित।

तीरथ तीरथ परमसो भरम गई अग्नहोत्र गई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं दपतास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कही सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरत चार कहूँ करत जश गंधर्भ गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितर कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही बचत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत ने तदपतास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार ने तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देवा देव वरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भयंग जय खेद न वेद न छेद छयंग जय जात न बात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वाख न दाक न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज गयो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देवा देव भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत ज्योत भुजंग किये देवा देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर था दिग बांध गणंग भव भूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज से तज्जे रजंग रज भूमा का सब

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता।

विश्वंबर विश्वनाथ है, अभिषेक विश्वभरण है, जिमी जमान के बिगे सदीव करम भरम है, अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में अभिषेक अन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है।

सन गौ सन केस नंदन पाव ही नासे जस किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सबत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेज अनाद मुरद्या ताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीन जच गंद्रप देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैश लंके बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील ब्री कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मथ उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जागरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद पतार के दर्जा पिए जह जोत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागब गर्द गाड़ अनंत हार हार कहियो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखयो न सेव कतेव देव दानो मूड मानो जश न जाने

सर्वतंजन सर्वभंजन सर्वतेजन भीत सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वदयाल द्वेख चक्र चिहन न वर्ण जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्वधाय।

सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जोगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूम काज लेथले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्रो मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास अनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आध अंत न मध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल जुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पश्र पार सोत सोत थके पहा

प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैं दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है।

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडया खंडन खून कते दाम नीत मंगन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो से माखासुर मर्दन भूमा का सलोर दधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ कते रक्तासुर।

करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय उसी मखा सुर मर्दन भरम विनाशन धर्म तुझे घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंगण फणियर फंकारण धनं तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम मथाहे एक वृते जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आद कुमार गाद वृते सुर नर मुन बंदन दोष निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मते गावरु कुमार यदमुत।

संकट निवारण धम्म धारण तेज प्रकरण तुंत तपेदुक दोक दहंती ज्वाल जयंती आदानाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तप तपतापन जपत जिवे जय जय ओसी शास्त्र प्रकरण आद नीला गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच सरे कर कसा कुठा।

खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दोष निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे दाम।

दुख दोग प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण सुत सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्धर गा है दुख हरे।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन विडाल बदे सरदार विपरखन दुर्जन दरखन दुल्लमरखन धर्म दुजे धूमराज विदुंसन श्रोण चुनसन सुंभन पादन सुंभ मथे जय जय हो सी मै कासुर मर्दनात नीलागाध कथे त्व प्रसाद पाथड़ी छंद तुम कहो देव सर्वं विचार जिम की हुआ।

कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बात तास कहे कौन भेद कहे नाम ताज है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल। उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेजान भिजताग। जल धन मही बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उतार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र

खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमा पद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोक रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री पद मा पत पाए आद अनंत अगात भूत।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह बीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम्बरी सुध सुंदर श्री पदमा पतल है। रोकंते और सोकंते जल जो कंते वो भात बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहाँ कहे तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सोदान देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब शरण्यावे। पाय सके नहीं पार प्रवाहों को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद गते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सगे जस भय जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सभ बजहारे भेद न पाय सके अन भेद को खेत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाथ अगाध वेखद वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत दारे देश विरयो कर भेष सबोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुहकारे दीन दयाला काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बंडैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हु के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे घोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मारे कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छम ही पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मानसो तपस्या कर दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को बनत है। गोखा गुन गावे चिन्ह चीन के शेष न्या

काल है शत्रुन के साल है क मित्रन को पोकते के वृद्धता की बासी है जो गुहों को जंत्र है तेज हूं को तंत्र है मोहनी को मंत्र है पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन भेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्रीहन नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न बार बार बार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हा बसी हल पि जावे पूर बिना पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन भेव नाद अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाज कैसे छत्रा नेर छपा कर कैसे छप काल के कूल के हंस

से सिहारो में ही रसे हुसन आबाद गंगा के सिधार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सुर सोरासी सुरंगाबाद निक सोर ही झूल के जम्बासी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती से फूल के फटक सी गलाज कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद निक सोहियत है हिमा से हिमल हर हार सी हलबा ने रहस कसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जजारी मौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र देता।

0: अनुमान ला लिया कह जी देखो गुरु महाराज जी का अंदर सचखंड गमन कर गए ज्योति जोत समा गए फिर और कहनू महाराज जी के दर्शन होए हैं ए प्यारियो और रूप जेड़ा इथे ए याद रखना चाहिदा वह सूक्ष्म रूप है वह कारण रूप है अदृश्य रूप है जिस तरह अपा भी एक कल्पना करते हैं कई बार प्यारियो महाराज जी दे कई गुरमुख प्यारियों नू अपा पाठ करते करते एक झलक बनती है कई बार सुपने दे विच भी प्यारियो उनू सुपन दर्शन बोलते हैं एक तो प्रतख दर्शन जेड़ा ए प्यारियो स्थूल का हुंदा है ते एक सरवण दर्शन हुंदे हन ए चार तरह के दर्शन हन ते एक सरवण दर्शन का मतलब कि हुण आप जी कथा सरवण कर रहे हो हुण ध्यान नाल तुसी सुनो कि जदों आपां कथा सरवण करदे आ कोई साखी जदों आपां कन्नां दे नाल सरवण करांगे ते मन प्यारियो एक रील बनाउंदा एक दृश्य बनदा कई गुरमुख प्यारियां दा जिहड़े नेमी प्रेमी हन ओह तुहाडा तजुर्बा होवेगा अनुभव होवेगा जदों भी प्यारियो कथा चलदी कोई साखी चलदी है खास करके सरवण दर्शन जिहड़ा साखियां दे नाल जुड़दा महाराज जी दी साखी जदों सरवण कराउंदे आ अकनाथ महाराज जी ने तानी है महाराज जी ने चंदन दी चिखा सजाई महाराज जी फिर फतेह बुलाए हन उस तो बाद अग दी लाट आकाश दे वल जो निकली मैं हुण आप नूं बेनती कर रहा ना ये जो बेनती कीती हुण अपने अंदर झात मारो तुहाडे अंदर रील बली के नहीं बनी वह नजारा तुहानू नजर आया कि नहीं हाँ जी इस तरह कनात बन गई इस तरह इहनू सुपन दर्शन बोल इहनू सरवण दर्शन बोलदे हन प्रतख दर्शन हो गया ते दूजा दर्शन जेड़ा ना सात संगा जी सरवण दर्शन कोई चीज नू सुन करके आपां एक कल्पना मन एक कल्पना बना लैंदा मन एक दृश्य जेड़ा वह पैदा करता है ते इस तरह एक हुंदा प्यारियो सुपन दर्शन हुंदे हन सुपने दे विच ते जदों बंदा सौ जांदा ते कल्पना दे रूप दे विच प्यारियो कई बारी सुपने दे विच आपां वेखदे हां कि कोई आकृति बनती है कई बार इंज लगता कि कोई भूतना आ गया बहुत विकराल रूप धारण किया सानू मार रहा खा रहा होंदा कुछ भी नहीं प्यारियो और सिर्फ प्यारियो एक मन घटते कपोल कल्पना होंदी है लेकिन कल्पना इन्नी प्रगाढ़ हो जाती बंदे डर जाते कई प्यारियो नींद दे विच ही हार्ट अटैक आ जाता उहदा कारण यह होंदा कि बड़ा उन्हूं भयानक सुपना आया ते सुपने दे विच इन्ना डर गया जिहदे नाल उहदा हार्ट फेल हो गया सो उह वी एक तरह दे उहनूं सुपन दर्शन बोलदे हन सो इस तरह प्यारियो यह जिहड़े सूक्ष्म रूप दे जिहड़े दर्शन जिहड़े हुण यह याद रखना चाहीदा कि जो दर्शन होए उहनां गुरमुख प्यारियां नूं ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
1: ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤ
0: ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ
1: ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਦੂਰ ਸਥਾਏ
0: ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ

से जन जुग में सुखवासी से मुकात पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी।

श्री वाहे गुरु जी महाराज जी। गुरु गरीब निवाज अंतर जामे सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज। आप जी दे हजूर अमृतमय शब्द बाणी कीर्तन चौंकी सोदर रहरास साहिब जी दी अरदास। अखरवाद घाट भूल चूक माफ करना पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विच प्रवान करनी। आईया समूह संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी कार्ज रास करने यात्रा सफली करनी। सिख पढ़दे सुनदे सरबत्र लाहेवंद होण गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: बाबा भोला सिंह जी नहीं सिंह जी दा
1: बोले
0: तेगा गाली बाबा भोला सिंह जी नहीं सिंह जी दा

0: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी।

0: प्यारे तुम खोपड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
1: प्यारे तुम खोपड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
0: प्यारे तुम खोपड़े।

वारी वारी पंजा सिसन कर परवा लिया, वारी वारी पंजा सिसन कर परवा लिया, ऐसा पंथ साजना सतगुरु मन विच ठान लिया, ऐसा पंथ साजना सतगुरु मन विच

सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कट ले, एक ना वाय

0: ज्ञान भूणा कच कच बुझे नानक में लिखिए ले जेहा वेखे देहा वेख महला दूजा
1: हमें यह जात है हमें कर्म कमाए हमें ई बंदना फिर प्रजो नहीं पाए हमें कितों पजे कुछ

और सदगुरु विट होवार आदित मिली एक समसमाल्या जिन कर विदेश ज्ञानंजन दिया ने नेत्र जगत ने हालिया खशम छोड़ दूजे लगे दुबे सेवन जा रहा सदगुरु है बोझ था प्रलय के नैम चारे।